आए लुतफन आए के जाबी हेसे हेसे जाबो बेसे मदीना नगरी दोरी आए लुतफन आए के जाबी।